हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

ਸਾਡੇ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੜ

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular. Mitiye jo.
6: Assalam samo batay haqeeqat jo 2000 कराची हैदराबाद मीरपुर खास लाड़काने सखर ऐं शहीद बेनजराबाद डिवीजन जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं मस्जिदुनि में ख़सूसी इबादतुनि जो बंदोबस्त मिलाद जा प्रोग्राम कराची में ईद मिलाद नबी सलाहु वसलम जो मर्कज़ी जुलूस मंझंदि 2:30 वॻे खां मस्जिद मां रवानो करंदो

صدر آصف علی زرداری ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां क़ौम खे जशन मिलादुन्नबी ते मुबारकबाद। صدر آصف علی زرداری चवण आहे त अलाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम खे समूर जान लाइ रहमत बणाए मोकिलियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त असां हिन मुबारक ॾींहं खे नए नसुल जो तहफ़ुज़ तहबीर ऐं किरदार सीरत नबी जी रोशनी में जे उनवान हेठि मल्हाई रहिया आहियूं। अमरीका ईरान नई जंग बदी ते इतफ़ाक़ करे वरितो, कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया दावा कंदे चयो आहे त जंग बदी में आबनाए हुर्मुज़ मां सामूंडी जहाज़नि लाइ महफ़ूज़ गुज़रगाह बि शामिल आहे। कुझु ॾींहनि में सरकारी तौर ते ऐलान कयो वेंदो, जंहिं बाद गालियूं ऐं टैंकी गॾिजाणियूं थींदियूं।

0: ईरान ऐं ओमान आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादी बहरी कॉरिडोर क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरान जे परडे वज़ीर अब्बास अराग़ची ऐं ओमान जे परडे वज़ीर सैद बदर बिन हमद बिन हमूद बसूदी जे तहरान मुलाक़ात। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादी बहरी गुज़रगाह क़ाइम करण ऐं सामूंडी रस्तनि तां बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जे मनसूबे ते ॻाल्हि ॿोल। गजल पदरनामे मौजूद मुलाक़ात दौरान आबनाए हुर्मुज़ मां जहाज़नि जे महफ़ूज़ गुज़रगाह बहाल करण बाबति मुशावरत कई वई। अब्बास अराग़ची चवणु आहे त मुस्तक़िल बहरी नेविगेशन कॉरिडोर क़ाइम करण ऐं मुस्तक़बिल में आबनाए हुर्मुज़ जा इंतिज़ामी मामला हलाइण बाबति इतफ़ाक़वार राय पैदा करण लाइ राब्ता जारी रहंदा। बानी पीटीआई खे अस्पताल मुंतकिल न करण ख़िलाफ़ तोहीन अदालत दरख़्वास्त ॿुधणी लाइ मुक़ररु। सुप्रीम कोर्ट 16 सेप्टेम्बर ते केस जी ॿुधणी कंदी। काज लिस्ट मूजिबि तोहीन अदालत जूं 94 दरख़्वास्त अलतवा हेठि आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राना सनाउल्लाह जो चवणु आहे त तिबी मुआइने बाद डॉक्टरनि बानी पीटीआई जी सिहत खे तसली बख़्श करार ॾिनो, जंहिं बाद खेसि जेल मुंतकिल कयो वियो। पैनल जी सिफ़ारिश ते खेसि अस्पताल दाख़िल करे सघिजे पियो। बानी पीटीआई बाबति अदालती फ़ैसिले ते अमल थियो या न, हुन जो फ़ैसिलो अदालत कंदी। ईरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे खे इंतिहाई मुस्बत नतीजा खेसि क़रार ॾेई छॾियो। ईरानी सदारत आफ़ीस मां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जे दौरे सां आम कामयाबियूं हासिल थियूं आहिनि। फील्ड मार्शल जे दौरे जा नतीजा जल्द साम्हूं अचण शुरू थी वेंदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान विच में मुलाक़ात दौरान मकबराई थी। आबनाए हुर्मुज़ खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे ख़ात्मे ते गौर कयो वियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसन नकवी चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मोहर अमरीका ईरान तकरार ऐं विचोभर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ क़दम खणणो हो। इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश ते मुकमिल बहाली लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़ुफ़ ऐं ख़र्चनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अकबराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं ख़िते में चटाधार अमन जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी। अफ़गान तालिबान रजीम जे तर्जुमान ज़ेबुल्ला मुजाहिद कूड़े बेबुनियाद दावा कई। बदख़ुशान में तशद्दुद अफ़गानिस्तान जे अंदरूनी सिक्योरिटी इंतिज़ामी चैलेंज जो अकास आहे। उहे चक्रियो अफ़गान तालिबान जे गैर नुमाइंदा जाबरानी रजीम ख़िलाफ़ अंदरूनी हथियारबंद जिदोजहद आहे। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान तर्जुमान जे बयान खे गुमराह कंदड़ ऐं हथ ठोकियो करार ॾेई छॾियो। इतलात वारे वज़ारत चयो आहे त पाकिस्तान लाॻीतो पुरामन ऐं मुस्तहकम अफ़गानिस्तान जी हिमायत कई आहे। पाड़ेसरी मुल्क खे कमज़ोर करण में का बि दिलचस्पी न आहे। तालिबान रजीम पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मुड़ण बदिरां पंहिंजे नाकाम हुकमरानी सां पैदा थींदड़ मसइलनि ते ध्यानु ॾिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां आबनाए हुर्मुज़ मां बारूदी सुरंगूं मुकमल तौर ते हटाइण जी दावा। बारूदी सुरंगूं विछाईंदड़ ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जो मुआशी ॾेवालो निकिरी चुको आहे। ईरानी हुकूमत फ़ौज जे वॾे हिसे खे पघार ॾियण जे क़ाबिल न आहे रही। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परडे॒ वज़ारत तर्जुमान चयो आहे त बेजिंग गैर क़ानूनी हिक तरफ़ियुनि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। कतर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो करार ॾेई छॾियो। कतरी परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त कतर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां सऊदी पाक गजल बिज़नेस काउंसिल जे चेयरमैन शहज़ादा मंसूर जी अॻुवाणी में आला सतही वफ़द जी मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि में इक़्तिसादी सहकार ऐं सीड़पकारी खे हथी ॾियण जे इम्काननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां स्ट्रेटजिक इक़्तिसादी भाईवारी में तब्दील करण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में G2G ऐं B2B गजल सहकार लाइ बहितरीन वक़्तु आहे। शहजादा मंसूर जो ज़राइत बंदरगाहन शाहरान ऐं हवाई अॾनि जे आउटसोर्सिंग में सड़ककारी में दिलचस्पी जो इज़हार। रियल एस्टेट तवानाई बिजली जे विर्च ऐं आई टी जे शोबनि में सड़ककारी जे मौक़नि में बि दिलचस्पी।
1: मुकनिहारी को वाइप कर देगा कौन?
0: पेट्रोल जो नओ अघु 343 रुपया 10 पैसा ऐं डीज़ल जो नओ अघु 371 रुपया 80 पैसा फी लीटर थी वियो। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोलियम शयुनि जा नवा अघु 26 ऐं 27 अगस्त लाइ हूंदा। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। खिते जी मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿतरफ़ लाॻापन सरकार खे भर्ती ॾियण ते गौर कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जे अमून ऐं इस्तक़ाम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे मुस्बत किरदार जी वाखाण कई। बेतमादी रिथाइण अपोज़िशन जो हक़ आहे, रोके नथो सघजे। वक़्त अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली स्पीकर अयाज़ सादिक चयो आहे त कानून साज़ी बाबति अपोज़िशन जो इतिहादु थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकजी पिया आहियूं, हाणे अपोज़िशन अॻिते वधंदी त असां बि वधंदासीं। हदशाह ख़तम कयो पीपल्स पार्टी जे वफ़द क़ौमी असेंबली जे स्पीकर चैंबर आमंद। वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां मुलाक़ात। पीपी जे वफ़द में फारूक एच नाइक, शीरी रहमान, राजा परवेज अशरफ ऐं मुर्ज़ा वाब शामिल। वफ़ाक़ी वज़ीराना सनाउला ऐं क़ानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तार बि मौजूद। पीपल्स पार्टी जे ख़र्चनि ते गौर। श्री रहमान चयो आहे त रुगो कोर्म पूरो करण न आयूं आया, हुकूमत सां कुझु मामलनि ते इख़्तिलाफ़ आहिनि जेके लिकियल न आहिनि, मसला हल थियणु घुर्जनि। सिंध जे घरू खाते कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा अली केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नोटिफिकेशन मूजिब कमीशन मीर रज़ा अली जे मौत जे असल हक़ीक़त हुन वाक़े सां लाॻापियल समूर रुखुनि जो जाइज़ो वठंदी ऐं केस में वधीक जांच या इज़ाफ़ी सबूतनि जी ज़रूरत जो तइन पिण कंदी। अदालती कमीशन पुलिस MLO या कंहिं सरकारी अलकार जे गिफ़्त ऐं फर्ज़नि में कोताही जी पिण जांच कंदी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी ख़ुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो, ॿुधंदा रहो।
6: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्ज़ी तर्जुमा और तफ़सीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्ररा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا أذقنا الناس رحمة اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت من بعد دراء مستهم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی پھر کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر حقیقت سے دور جانے لگے۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی. جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دی، یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. بنیادی طور پر مانا یہ بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے. جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کے، پھر اور مصیبت آتی، پھر یہی کہتے، بار بار یہی کچھ کرتے رہے. اچھا ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر چال بازیاں کر کے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں. اللہ کی آیات کیا ہیں، خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواز تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں. اور ان کی مکاریوں میں مثلا مکاری کیا تھی، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. آیت نمبر ہے 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں. اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس

जोड़े जोड़ जहान जी जडहें जोड़ियाऊं, जोड़े जोड़ जहान जी जडहें जोड़ियाऊं, खामंद खास खलके मोहम्मद मुकियाई, कलमो त करीम ते चिटो चयाई, डुखे डिनाई सराऊं सैद चयाई।

जी असमिन प्रोग्राम जशन रहमत वहां बुद्ध पाया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तवां जो असां जो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ताईं हिन वक्त हलंदा कमर्शियल ब्रेक जी तरफ वरी वापस ईंदासीं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: मानस हो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो या कतरा छो प्यारियों जो त असा जे बार पेरी पोलियो या कतरा पी चुको है। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो या कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वा बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जे में असा जको पोलियो जो दींदासी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थींदी बगैर कें दर्द जे। वैक्सीन जका पंजे बार के करायो त
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 9:45 AM. This time check.
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अलम रोहड़ी, खतीब व मुतवली, जामिया व आज वाली मस्जिद रोहड़ी, जबकि नातिया नजराने पेश करेंगे वादिये मेहरान के मारूफ सना खान सैयद साद अली कासमी सखर।
2: आइए इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रंग में रंगी इस महफिल को सुनिए और शामिल हो ईमान और अकीदत की रोशनी में सिर्फ GFM नेटवर्क पर।
4: चौतालीह साल जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS

ईरान मान अपने हरमुज आर्जी बैरी कॉरिडोर कायम करण ते इतफाक करे वरतो। ईरान जे परदेही वजीर अब्बास इराकी ओमान जे परदेही वजीर सैयद बर्दुज हमाद जे तेहरान में मुलाकात। अपने हरमुज में आर्जी बैरी गुजरगाह कायम करण ए सामुंडी रस्तन था बारूदी सुरंगू साफ करण जे मनसूबे ते गाल्ह बोल गडियल। पदरनामे मौजूद मुलाकात दौरान अपने हरमुज मां जहाजन जे महफूज गुजरगाह बहाल करण बाबत मुशावरत कई वई। अब्बास इराकी यो चवण आहे त मुस्तकिल बैरी कॉरिडोर कायम करण ए मुस्तकबिल में अपने हरमुज जा इंतजामी मामला हलायण बाबत इतफाक राय पैदा करण लाइ राबता जारी रहंदा।

0: अमेरिका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ लाइ घुर्बल क़दम खणंदो। चीन अमेरिका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परदेह वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग जी गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियुनि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। क़तर बि ईरान ते अमेरिकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो करार ॾेई छॾियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन 1166 पे।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: DAFM Network आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ DAFM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। DAFM नेटवर्क पर।
1: साईं, असांखे अॼोके ॾींहं जे मुनासिबत जे हवाले सां तव्हां पंहिंजो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हवाले सां थोरो असांखे ॿुधायो।

अजीआ समिन बारह रबेल के हवाले से जशन आमद रसूल के हवाले से अज अस खुसूसी प्रोग्राम है जशन रहमत जो हम बुध पे जी एफ एम 88 के नेटवर्क तमाम मेजबान नेमतुल्लाह हजूण जो समिन तवाजो असो साथ रह ठीक 11 लगे तरह पे कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदी।

0: 10:30 AM. This time. It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: आया नबी मेरा, आया नबी, आया नबी मेरा.
3: जी है FM नेटवर्क, आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है. दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: याला घर वया, फसल वया, नुकसान थी वया, पर मुंजा मौला महबूब जे मिलाद जी नेमत नखस्या, जैसी ताई जिंदगी आ मिलाद मलाइंदा से।

0: ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: लजपाल दे अचन वारे वारे जो मीला दुकर मुस्तफा मनसार जो मीला दुकर अचन वारे वारे जो मीला दुकर मुस्तफा मनसार जो मीला दुकर रब दियई तैयार जो मीला दुकर

0: उन पगदार जो मीलाद कर, मुस्तफा जो मीलाद कर, उन पुनल पगदार जो मीलाद कर, मुस्तफा मंचार जो
1: मीलादार
0: जो मीलाद कर, मुस्तफा मंचार जो मीलाद कर।
1: सुभान अल्लाह फकीर साईं, सुभान अल्लाह। जी हा, समय न असांजो फ़कीर वहीद अली शेख, जंहिं पंहिंजी आवाज़ में बहितरीन मौलूद ऐं नात ॿुधाई लख कुर्ब साईं जा। असांजो प्रोग्राम जशन रहमत ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे, पंहिंजो 12 रबीउल अव्वल जे हवाले सां अव्हां ॿुधो पिया।

0: जी असम प्रोग्राम जशन रहमत वहां बुध पाया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता माव जो मेजबान निमतुल्ला जूने जो समय अस सवेर मौलूद बुधोसी साई इमदादुल्ला फुलपोटरे जी आवाज में पर इन वक्त साई असा सा लाइन से अची चुको इमदादुल्ला फुलपोटरो सिंध जो बेता जो बादशाह नाथ खान उन आवाज में अस सीरत नबी भी बुधंदी मौलूद बुधंदी साई अस्सलाम वालेकुम साईं तव्हांखे असां प्रोग्राम जी एफ एम 88 जे नेटवर्क में भलीकार चऊं पिया आमीन आमीन सर तव्हां असांखे पंज मिंट सीरत नबी सलाह वसलम जन जी ॿुधायो ऐं बाद में असांखे हिकिड़ो मौलूद शरीफ़ ॿुधायो सर जी बिल्कुल
1: सरदार इमाम नबी आहे साईं जन जी विरादत सां शहादत जो ॾियारो आहे अलाह ताला खां दुआ थो कयां त अलाह ताला हुननि जे सदिके असां सभिनी मुस्लमाननि खे महबूबनि करीमनि जे सही लक्ष क़दम करण जी तौफ़ीक़ अदा फरमाए
0: ऐं
1: साईं जन जी ॾसल राह खे असांखे मज़बूती सां मिलण जी तौफ़ीक़ अदा फरमाए उन सां गॾु गॾु अलाह ताला असांजे हिन मुल्क पाकिस्तान जी बि हिफ़ाज़त फरमाए अलाह ताला सभिनी मोमिननि खे महबूबनि जे सदिके आख़िरी घड़ीअ में कलमो मौत वारी घड़ीअ में कलमो न थी फरमाए महबूबनि करीमनि जे पाड़े खे जन्नत फिरदौस
0: अलाह
1: दुआ आहे उमत मोहम्मद जे लाइ शेर जा कोल मां कुझु अव्हां खे ॿुधायां
0: जी साईं
1: सजण जी थी विलादत विलादत
0: सुभान अल्लाह
1: सजण जी थी विलादत विलादत सादत संसार पयो चमकी गमगीन पया मुर्की जग सारो पयो जड़की जग सारो पयो जड़की सजण जी थी विलादत मलाइक मुबारक पया खाजी पथर भी नरम थी पेरन में पवन गुलड़न में थी गुलज़ारी खुशन हुई थी ऐं नारी गुलड़न में थी गुलज़ारी खुशन हुई थी ऐं नारी आज़ाद जमी प्यारी आज़ाद जमी प्यारी सजण जी थी विलादत विलादत सादत संसार पयो चमकी गमगीन पया मुर्की जग सारो पयो जरकी जग सारो पयो जरकी सजण जी थी विलादत
0: सुभान अल्लाह
1: किसरा जा पूरा पया

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: हक़ सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:50.

0: जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बोस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।

0: जी है एफएम नेटवर्क, आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें रोशनी। अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
1: जी एफएम 91.6।

अच्छी पता करते हैं लोगों के दिलों को चाहते लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरव्यू वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूट वैसी परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। और ये कैसे हैं आप? आई होप श्री जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपको मेरा साथ रहता है, आज भी रहेगा। इसके अलावा जी वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे बस में, ट्रक में, रिक्शे में, कार में, बाइक पर, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट देम नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बहुत खुदा खैरियत मौजूदा, तवक्कुल खुदा खैरियत मथियूर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
0: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: Yes.
1: Okay, the next caller. Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Ji, kaun baat kar rahe, kahan se?
0: Ye kisse baat kar
1: raha hoon. Kaun baat kar rahe, sorry?
0: Chishti
1: baat kar rahe hain.
0: Ji.
1: Kahan se baat kar rahe hain? सखर से बात कर रहे हैं. पहली दफा प्रोग्राम सुन रहे हैं? पहली दफा कॉल लगी है?
0: प्रोग्राम.
1: अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपका. और मुझे बताएं कि कोई नाच सुनाएंगे आप हमें अच्छी सी? प्लीज सुनाइए.
0: जब
1: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
0: बस, और आपके दिन से सहान है खुदा.
1: सॉरी, आपकी आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज इसको क्लियर कीजिए.
0: जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज के दिन के हवाले से हजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत में काम करें, प्यार मोहब्बत और आपस में खुलूस के साथ रहें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें और आलम इस्लाम के लिए दुआ करें. अल्लाह पाक आलम इस्लाम को इज्जत बख्शे.
1: आमीन सुमा आमीन. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा चिश्ती, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. एंड हम प्ले करने जा रहे हैं जी ये खूबसूरत नाच जो कि हमें सुनाई है चिश्ती ने, तो सुनते हैं जी बहुत ही मोहब्बत और अदब के साथ, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे.

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
1: ओके जी, थैंक यू। किसकी आवाज में है ये नाथ?
2: ये नाथ।
1: अच्छा, टाइटल क्या है इसका?
2: टाइटल पता नहीं।
1: चलो मैं इसको सर्च करती हूँ जी। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 03000113488 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और कॉल करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप सुन रहे हैं और सुन पाएंगे आपसे ठीक ठीक पूरे पूरे एक बजे तक, और हम प्ले करने जा रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सी नात, इसको हम प्ले करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद।

0: अब आप सुनेंगे GAFM।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़ जी।

शरीफ पारां कौम के जश्न मिलाद उल नबी सल वसलम से मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवण है अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसलम के समूरन जहान ला रहमत बणाए मोकलो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पैंजे पैगाम में चयो है असां हिन मुबारक डींहं के नए नसुल जो तहफ़ुज़ ताबीर ए किरदार सीरत उल नबी सल वसलम की रोशनी के उनवान हेठ मल्हाए रहा आहियूं।

ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराक़ची जो फील्ड मार्शल सैदास मुनीर सां फोन ते राब्तो। ईरानी सरकारी टीवी मूजिब अब्बास इराक़ची फील्ड मार्शल सैदास मुनीर सां खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॿिन्ही अॻवाणनि गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते बि गौर कयो। अमेरिका ईरान नए जंग बंदी इतफाक करे वरतो। कुछ डीह में सरकारी सतह से ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया दावा कंदे चयो आहे त जंग बंदी में आपना हरमुजमा सामुद्री जहाजन लाइ महफूज गुजरगाह भी शामिल आहे। कुछ डीह में सरकारी तौर से ऐलान कयो वेंदो जै बाद गालियों ए टेक्निकल गड जानी थींदियूं।

फिलहाल अमेरिका ईरान ते वधीक हमला न कंदो। अमेरिकी परडेही वज़ीर इतिहादी मुल्कन के आगाह करे छॾियो आहे। अमेरिकी मीडिया मूजिब मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कन जे हम मुनसिबन खे फोन ते आगाह कयो आहे। अमेरिका ईरान ते हमलनि खे पाबंदियुनि ॾांहुं मुंतकिल करे रहियो आहे। ईरान ते वधीक हमलनि जो इम्कान नाहे।

ओमान सा आप नहर मुज में वक्ती रस्ते ते इतफाक जो मकसद आप नहर मुज खुलण ना है। अमेरिका आप नहर मुज मां बारूदी सुरंगू हटायू आहिन त जहाज गुजारे डेखारे। ईरानी परडेही वजीर काज़िम गरीब आबादी चयो आहे त आप नहर मुज बाबति अमेरिकी दवाऊं कूड़ियूं आहिनि। ओमान सां मुआदे जो मकसद बि आप नहर मुज जो खुलण न हूंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पियारियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं

ते माथो नुक्स गजी छो नथो बुडी मरी मरी मरी बुडी मरी आहे बेब नबी जानी थो गैब नबी चवी थो पाण जे इंसान केड़ो आहे इंसान केड़ो देर पुको ना है जिते मौला सजो अर्श मथे ही हबीब जो कमाल आ झूमी जा झूमी जा।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके का और से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा. और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं जी, और ये कर सकते हैं कि आपके कमेंट्स को भी हम रीड करेंगे एंड कमेंट्स के साथ साथ हम आगे चलेंगे.

0: It's 12:30. It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई चौथी दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैंप जगत वैक्सीन कैंप उमर जे पोलियो लगी सके तो कैंप उमर जे वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए.
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: DAFM Network, आप सबको ईद मिलाद।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
7: Brought to you by
8: Sona Urea Granular. Mittiye jo maan vadhaye.
6: Aap sun rahe
9: इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छो। अगोड़े वफाकी वजीर फवाद चौधरी है बाहि सबब बारन जे फौत थियण जी जिम्मेवारी कबूल कंदे मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा ॾे। श्रीन मज़ारी चयो आहे त फिल्म जो इंतिज़ामिया बेध्यानी जो शिकार आहे, मुस्तफ़ा कमाल साने जी जिम्मेवारी कबूल करे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनके ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

Mila Damal Hainda Singh.

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ. पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं. बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं. इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है. आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे.
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद सिंध जो आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी है जो
6: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने।
7: इस्लामाबाद के पिंड अस्पताल के बारन वारे वार्ड के बाह लगी वही 15 ताजा जावल बार सड़ी फोत एक के बचाया वो पिंड के डायरेक्टर बाह साने में 15 बार के फोत थे तस्दीक कर छी। अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ एक बार के बचाया वो फोती बार में 11 की सुणप थी वही पंज जा लाश वारसन हवाले किया वह सड़ी फोत थे बार के वारसन जहां इंतजामिया संगीन इल्जाम पान लगे हा अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे हा बाहे वक्त भी अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वयो हो। पिम्स साने बाद वजीर आजम जी इजलास कावड़ जो इजहार सेहत वारे वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरी के अहदे तां हटाए छो साने की जांच लाए आला सतही कमेटी भी कायम अगोने सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी वाक्य की शफाफ पान लगे अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे हा बाहे वक्त भी अमलो अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे इंसानी जानन के बचाने लाए भी मुनासिब इंतजाम न हुआ।

पिमसाने ते मुल्की सियासी क्यादत डुखारी फोती बारन जे वारसन सां हमदर्दी जो इज़हार वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन वडे वजीर सैद मुराद अली शाह सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण ऐं ॿियनि पारां साने ते डुख जो इज़हार मुराद अली शाह चयो आहे त पिम साने अफ़सोसनाक ऐं डुखाईंदड़ आहे। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त मुतासिर कुटुंबनि जे डुख में शरीक साने ते दिली सदमो रसियो आहे। मुश्किल वक़्त में मुतासिरनि सां गॾु बीठल आहे। पिम्स में बाहि सब 15 ॿारनि जो फोत थियणु हादसो नाहे। सिहत वारो वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे सिंध हुकूमत जे तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त हीउ संगीन गफ़लत ऐं इंतिज़ामी नाकामी जो मामिलो आहे। पिम्स वाक़े बाद अॻवाननि वफ़ाकी वज़ीरनि बि सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। अॻोणे वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त ज़िमेवारी क़बूल कंदे मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा ॾे। शरीन मज़ारी चयो आहे त मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
8: बाद जे पीएम अस्पताल के बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही 15 ताजा जावल बार सड़ी फोत एक के बचाया वो पीएम से डायरेक्टर बाह साने में 15 बारन जे फोत थे जी तस्दीक करे छी। अस्पताल इंतजामिया मौजूद वार्ड में 16 बार दाखिल होया एक बार के बचाया वो फोती बारन मां 11 जी सुणप थी वही पंज लाश वारसन हवाले क्या वह सड़ी फोत थे बारन जे वारसन जा इंतजामिया ते संगीन इल्जाम वारसन मौजूद बाह लगे हाथ अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे बाहे वक्त अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वयो हो। पिमसाने बाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतह इजलास लागापियल आफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार सद सेहत वारे वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरी के उहदे तां हटाए छो साने की जांच लाए आला सतह कमेटी भी कायम अगोणी सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हों वाके की शफाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत फोती बार के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार शहबाज शरीफ चवाए नुकसान जो अजालो न थो करे सकजे। फिम्स में मुकर्रर मयार मौजूद बाह विसायण जा इंतजाम न होया बाह का इंसानी जानन के बचाण वारा इंतजाम भी नाकाफी होया शुरुआत में फिम्स अमले बाह विसायण लाए पहुंतल फायर ब्रिगेड अमले के रोकण की कोशिश कई। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआत रिपोर्ट में फिम्स अस्पताल बाबत छिड़काईंदड़ इंकशाफ फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मौजूद अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ एमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ बाह विसायण इंसानी जानन के बचाण लाए भी मुनासिब इंतजाम न हुआ। फिम्स थाने ते मुल्की सियासी कयादत आसिफ अली जरदारी वफाकी गुरू वजी वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह सीनियर वजीर शर्जिल नामे मणे बेन पारा थाने ते दुख जो इजहार सदर आसिफ अली जरदारी चयो आहे त थाने जे जिम्मेवारन जो तइन करे कार्रवाई कई वञे। मुराद अली शाह चयो आहे त फिम्स थाने अफ़सोसनाक ऐं डुखाईंदड़ आहे शर्जिल नामे मणे चयो त मुतासिरन जे दुख में शरीक आहियूं मोहसिन नकवी चयो आहे त थाने ते दिली सदिबो रसियो आहे।

15 ॿारनि जो फौत थियण हादसो नाहे। सिहत वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान सारिया जावेद चयो आहे त ही संगीन गफ़लत इंतज़ामी नाकामी जो मामिलो आहे। पिम्स वाक़े बाद अॻवाणनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि बि सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। अॻोणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त ज़िमेवारी क़बूल कंदे मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा ॾे। श्रीन मज़ारी चयो आहे त मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: या रसूल अल्लाह, गरीब आए हूँ, गुनहगार आए हूँ। या रसूल अल्लाह, तू जा आए हूँ, तुझे नाले ते पंजी ई जान कुर्बान करण वारा आए हूँ।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: पिम्स में मुकरा वसाण जा इंतजाम न होया बाहि का इंसानी जानन के बचाण वारा इंतजाम ले बाहि विसायर ब्रिगेड अमले कई इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत शिकायत इंकशाफ फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मौजूद अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ बाहि विसाण इंसानी जानन के बचाण लाय मुनासिब इंतजाम न हुआ इंसान इतने

सरपारकर सांगर नौशेरो फेरो सकरन मोरो ठारू शाह कंडियारो ए काजी अहमद में रैलियूं झुडो डिगड़ी इस्लामपुर नगर पारकर कुंडरीस ए बेन शहर में जशन डी जानन के सरदार के भेटा पेश मार्शल सैद आसिम मुनीर पारा तेहरान के दौरे बाद अमेरिका ए ईरान विच में जंगबंदी का इम्कान वधी वया अमेरिका ईरान ने जंगबंदी से इतफाक करे वरतो कुछ डीह में सरकारी सतह से ऐलान कयो वेंदो रूसी मीडिया की दावा ईरानी सरकारी मीडिया मौजूद ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर से फोन से राबतो कयो आए अब्बास इराकची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खिते की सूरत हाल से गालू कयो आए फिलहाल अमेरिका ईरान से हमला न कंदो अमेरिकी परदेही वजीर इतिहादी मुल्कन के आगाह कर छो है अमेरिकी मीडिया मूजिब मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कन के हम मनसूबन के फोन से आगाह किया है अमेरिका ईरान से हमलन के पाबंदी ना मुंतकिल कर रो है ईरान से हमलन जो इम्कान ना है ओमान से आबना हरमुज में वक्ती रस्ते ते इतफाक जो मकसद आबना हरमुज खुलन ना है अमेरिका आबना हरमुज में बारूदी सिरंगू हटायू आन जहाज गुजारे डेखारे ईरानी परदेही वजीर कासिम गरीबाबादी है आबना हरमुज बाबत अमेरिकी दवाओं कूड़ियों आन ओमान से मुआहदे जो मकसद भी आबना हरमुज खुलन न हों नव कोट भरसा गोट पंजू खान चांडो में नींगर जू कुहाड़ू लगल लाश हथायो है लाश की सुणप 14 साल के नींगर बरकत चांडो के नाले से कई वही पुलिस टिन जणन के शक की बुनियाद से गिरफ्तार किया है वाके बाबत जांच कर रहा है मटियारी में नौजवान पुरस्कार तौर फोत बाग में लाश मिलो है कौमी शाहरा के घर में मीरन के बाग में नौजवान जो लाश हथायो है अस्पताल मुंतकिल कर लाश की जांच के पुट मोहम्मद इस्माइल तौर सुणप की है खैरपुर वेझो इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो के कतल इल्जाम हेठ आयल पुलिस अहलकार मुअतल एसएसपी खैरपुर जानी बुड़ा के चौकी इंचार्ज कामरान वसाण के मुअतल किया वो मकतूल इंजीनियर के वारसन जो बीहर धरने जो ऐलान वारसन चयो है केस दाखिल न किया वो तो बीहर धरणो वेंदो

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: थाने में फौत थियल 14 बारन जा मर सुञाणा बाद वारसन हवाले। सड़ी फौत थियल बारन जे वारसन जा इंतजामिया ते संगीन इल्ज़ाम। वारसन मूजिब बाह पाण लगे हा त अमलो बे ज़ख्मी थे हा। बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर कढ़ण बदरां पाण भजी वियो हो। पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास। लागापियल ऑफिसर सख्त कावड़ जो इज़हार। सेहत वारे वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरिया के ओहदे

सां हटाए छॾियो। साने जी जांच लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइम। अॻूणो सेक्रेटरी शाहिद ख़ान कमेटीअ जो सरबराह हूंदो। वाक़िए जी शफ़ाफ़ जांच करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ फौती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दो नथो करे सघिजे। कंदड़नि खे न छॾींदासीं, पाण खे बि एहतसाब लाइ वज़ीर आज़म आॾो पेश कयो आहे। ऑक्सीजन सबबि बाह जल्दी पखड़ी। सिहत वारे फाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त वार्ड में ॿारनि खे ऑक्सीजन लॻल हुई, जंहिं सबबि बाह वधीक भड़की। का बि शइ लिकी न सघंदी ईंदो। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरीअ जो चवण हो त रेस्क्यू टीमूं वाके वारे हंधि जल्द पहुतियूं हुयूं। पिम्स जे सीसीटीवी फुटेज समेत समूरियूं शाहिदियूं महफ़ूज़ कयूं आहिनि। ज़िमेवारनि खे न छॾियो वेंदो। फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जा दर बंदि हुआ, वाटर टैंक्स बि खाली हुआ, डॉक्टर्स बि मौजूद न हुआ। अवाम तरफ़ां बि सवाल पुछंदासीं। पिम्स में मुक़रर मयार मूजिबि बाह विसाइण जा इंतज़ाम न हुआ, बाह वारा इंतज़ाम बि नाकाफ़ी हुआ। शुरूआत में पिम्स अमले बाह विसाइण लाइ पहुतल फायर ब्रिगेड अमले खे रोकण जी कोशिश कई। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड जी शुरूआती रिपोर्ट में पम्स इस्पताल बाबति छिरकाईंदड़नि इंकशाफ़। फायर ब्रिगेड जी रिपोर्ट मूजिबि इस्पताल जे दरवाज़नि ते बि ताला लॻल हुआ, एमरजेंसी गेट बि मौजूदु न हुआ। बाह विसाइण इंसानी जाननि खे बचाइण लाइ बि मुनासिब इंतज़ाम न हुआ।

लाखाणे लाड़काणे डिवीजन में ईद मिलादुल नबी सलाह वसलम के सिलसिले में रैलियों, हर तरफ नातन दुरूद जो विर्द। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, कश्मोर, कंदकोट में रैलियों कढ़ी व्यू। रोहड़ी, सालेहपट, पनो आकिल, डहरकी, उबावड़ो, कोटरी जी, गंबट, किंगरी ए सोबे देरे में भी रैलियों। डोकरी, रतोदेरो, वारह, डंगवाणी, गढ़ी खैरो, मीरो खान ए बेन शहर में भी रैलियों कढ़ी व्यू। शहर रैलियों कढ़ी मिलाद जो महफिलू मुनद कयूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ GAFM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए GAFM नेटवर्क पर।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GAFM नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले ईमान को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक हो। अपने होस्ट आगा जब्बार खान का सलाम कबूल कीजिए। लिसनर्स, GAFM नेटवर्क की ईद मिलादुल नबी की लाइव ट्रांसमिशन आप GAFM के तमाम स्टेशन सखर, लाड़काना, मैरापुर, मोरो, सकरण, मटियारी, मातली और मीरपुर खास से लाइव सुन रहे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। लेसन, आज का दिन उस अजीम हस्ती की विलादत का दिन है जिसकी तारीफ में सारे जहां के दरख्तों के कलम तराशे जाएं और सारे दरियाओं के पानी की स्याही बनाई जाए और आपकी हमदो सना बयान हो, फिर भी हक बशर अदा न होगा। आज हमारे इस लाइव प्रोग्राम का मौजू है वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लगभग पाने वाले। और हमारे साथ लाइव स्टूडियो मौजूद हैं बालाई सिंध के मशहूर आलम दीन मोहतरम साहबजादा मोहम्मद उबैदुल्ला कुरैशी सुबानी साहब, सरप्रस्त जश्न ईद मिलादुल नबी कमेटी रोड़ी और फिदायन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड़ी और खतीब व मुतवल्ली कदीमी वाइज वाली मस्जिद रोड़ी, और साथ में हमारे जो मारूफ सनाख्वा हैं सैयद साद अली कासमी। मैं अपने दोनों मेहमानों को अपने लाइव स्टूडियो में वेलकम करता हूं। और हम इस प्रोग्राम का जो मतलब जो इब्दा है, हम काफी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नाच जो है हजूर के अक्सर में पेश करें।
2: सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह,

एफएम नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए एफएम पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। जीए एफएम नेटवर्क।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज
3: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर।

ते माथो नुक्स गजी क्यों न थो बुड्डी मरी मरी मरी बुड्डी मरी आह बेब नबी जानी थो गैब नबी चवी थो पान जेड़ो आही इंसान केड़ो आही इंसान केड़ो।

0: ये है FM नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए एफएम पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, फौती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार कयो वयो। शहबाज शरीफ चयो तो नुकसान जो अजालो नथो करे सके। कोताही कंदड़न के न छींदी, पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश कयो आहे। ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पकड़ी। सेहत वारे पाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आहे त वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई, जैं सबब बाह वधीक तेजी से भड़की आहे। का भी शय लिकी न सकंदी, सब कुछ सामू इंदो। मुमलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंती हुयूं। पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरू शायदू महफूज क्यों, जिम्मेवार न छो वो।

0: पिम्सान ते समूरो मुल्क रोई रहियो आहे। साञा रोकण लाइ एहतसाब ज़रूरी आहे। पिम्स सियासत करण न पर अवाम जा अहंज ॿुधण आया आहियूं। पीपल्स पार्टी जे सेनेटर शेरी रहमान चयो आहे त ज़िमेवार वज़ीर खे पाणी इस्तीफ़ा ॾियणु घुर्जे। फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जा दर बंदि हुआ, वाटर टैंक्स बि खाली हुआ, डॉक्टर्स बि मौजूद न हुआ। अवाम तरफ़ां बि सवाल पुछंदासीं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आया न
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: جھوم کے بولو
1: مرحبا مرحبا مرحبا

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिल होता है खुश मेरा सरकार के आने से, दिल होता है खुश मेरा सरकार के आने।
1: अक्सर मान जो सवाल हो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी बने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन करे सके तो रेशो वधी का 10 साल का घट आ तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए तो सभी के बूस्टर डोज लगराए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: डाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: KTN News
1: brought to you by
2: मौजूद न हुआ
3: सोना यूरिया
2: सवाल पूछना
3: मिट्टी जो मान बताए
0: आप सुन रहे थे
2: सानियों किंज पेश इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार करे वरती रिपोर्ट में चयो वियो आहे त NICU में इनक्यूब्यूटर सां गॾु ऑक्सीजन वारो नेबोलाइज़र फाटो नेबोलाइज़र फाटण सबब ऑक्सीजन मां बाह पखड़ी ऑक्सीजन बंदि थियण ऐं सड़ण सबब ॿारनि जो मौत थियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: سب جھومتے بولو
1: مرحبا مرحبا مرحبا

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सरकारे आ गए, गम खारे आ गए।

0: अभी बुधो प्या।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: इस्लामाबाद जी पिम्स अस्पताल जी बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही 15 ताजा जावल बार सड़ी फौत एक के बचायो वयो। पिम्स के डायरेक्टर बाह थाने में 15 बारन जे फौत थन जी तस्दीक करे छली। अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ एक बार के बचायो वयो। थाने में फौत थल 14 बारन जा मर सुणाना बाद वारसन हवाले। सड़ी फौत थल बारन जे वारसन जा इंतजामिया ते संगीन इल्जाम। वारसन मूजिब बाह सतही इजलास लागापियल ऑफिसर ते सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत वाले फाकी सेक्रेटरी असलम गोलिया के उदे ता हटाए छड़ियो। साने जी सेहत वाले

डॉक्टर्स भी मौजूद न हुआ आवाम तरफा भी सवाल पुछंदासी पिम्स अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर वरती रिपोर्ट में एनआईसीयू में इनक्यूबेटर से गड ऑक्सीजन वो नेबोलाइजर फाटो नेबोलाइजर फाटन सबब ऑक्सीजन बाह पखड़ी ऑक्सीजन बंद थे सड़न सबब बारन जो मौत थो इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसायण वाले इंतजाम के नाकाफी करार दे छो बाह का बचाव वाले इंतजाम से भी सवाल उथारे छाया इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़कैंदड़ इंकशाफ रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ पिम्सान से मुल्की सियासी क्यादत डुखारी फौती बारन के वारसन से हमदर्दी जो इजहार सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी मोहसन नकवी वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सीनियर वजीर शर्जील मेमण बन पारा साने से डुख जो इजहार सदर आसिफ जरदारी साने की जिम्मेवार तोइन कर कार्रवाई कई वे बिलावल भुट्टो तो पिम्सान्यो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक्य है मुराद अली शाह जो चवण हो तो पिम्सान्यो अफसोसनाक डुखाईंदड़ है शर्जील मेमण मुतासर की डुख में शरीक आयू मोहसन नकवी जो चवण हो तो साने से दिली सदमो रसो संदन डुख में बराबर जा शरीक आयू मुसलमान के विरायण वाली साजिश के फील्ड मार्शल से गड़ी नाकाम बनाया अमुन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्क में नफरत पखेड़ में नाकाम रहा सऊदी ए तुर्किया सदाई सुठी ए खराब वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनों इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब कदे वजीर आजम जो को इज्तमा याद दिलाए तो अस एक उम्मत आयू नए नस्ल कौम की उम्मीदन जो मरकज है नई नस्ल के मुल्क उम्मत की तरक्की किरदार अदा करो पवो

सिंध समेत समूरी मुल्क में रहमतुल आलमीन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो जशन अकीदत एहतराम से मल्हायो वियो। ॾींहं जी शुरूआत वफ़ाकी राजधानीअ में 31 तौबनि ऐं सूबनि में 21 तौबनि जी सलामीअ सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ासि दुआउनि जो इहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं खु़शहालीअ लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलाद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रैलियूं ऐं मेड़ा का दादू जामशोरो मटियारी बदीन ठठो सजावल टंडो मोहम्मद खान ऐं टंडे अलियार में रैलियूं कढियूं वयूं। मातली तलार सेवण जोही मेहड़ चंबड़ चूहड़ जमाली सईदाबाद ओडेरो लाल ऐं ॿियनि शहरनि में बि मेड़ा का मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी मेलाद कराया विया। मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में ईद मिलाद उल नबी सलाह वसलम जे सिलसिले में रैलियूं हर तरफ़ नातन ऐं दरूद जो विर्द घोटकी खैरपुर शिकारपुर जेकबाबाद कंबर शहदाद कोट ऐं कश्मीर

कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोहिड़ी, सालेपट, पनवाकिल, डहकी, उबावड़ो, कोट डिजी, गंबट, किंगरी ऐं सोभेदेरे में बि रैलियूं। रतोदेरो, वारह, गढ़ी यासीन, तंगवाणी, गढ़ खैरो, मेरो खान ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढी वयूं। हर पासे मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। मीरपुर ख़ास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में बि ॿारहं रब लेवल जा प्रोग्राम। मेलाद जूं महफ़िलूं उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, नौशहरो फिरोज, सकरण, मोरो, ठारूशाह, कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। जुडो, डिगड़ी, इस्लामकोट, नंगर पारकर, कुंडी, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं।

अख़बार जो बि जमी मुक़ाबिलो कंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सख़्त ज़ख़्मी आहे, फौत नाहे थियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जेकॾहिं मुश्तबा खामनाई फौत थियो आहे त ईरानी ज़बरदस्त ड्रामो करे रहिया आहिनि, छाकाणि त हू हतमी मंज़ूरीअ लाइ सुप्रीम लीडर खां इजाज़त वठण जी ॻाल्हि कंदा रहंदा आहिनि। पक आहे त सुप्रीम लीडर ज़ख़्मी आहे।

0: अब आप सुनेंगे, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सब झूम के बोलो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।

ते माथो नुक्स गजी छो न थो बुढ़ी मरी मरी मरी बुढ़ी मरी आहे बेब नबी जानी थो गैब नबी चवी थो पान जेड़ो आही इंसान केड़ो आही इंसान केड़ो।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ताडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कहता।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार सेहत वाले फाकी सेक्रेटरी असरे तां हटाए छो साने की जांच लाए आला सतही कमेटी भी कायम अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हों वाके की जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत पारसन से हमदर्दी दुख जो इजहार शहबाज शरीफ चो तो नुकसान जो अजालो नथो करे सके। कोताही कंदड़न के न छड़ींदासी पान के बेहिसाब लाए वजीर आजम आलो पेश किया बाह जल्दी पखड़ी कमाल चो है तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जैं सबब बाह वधिक भड़की का भी शय लिकी न सकंदी सब कुछ सामू ही मुमलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध समूरी शाहिदू महफूज कई व्यू आन जिम्मेवार के न छो वो पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है साना रोकण लाइ एहतसाब जरूरी है पिम्स सियासदान वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे दर बंद अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार करे वरती रिपोर्ट में चयो वियो है NICU में इनक्यूबेटर से गड ऑक्सीजन वारो नेबोलाइजर्स फाटो नेबोलाइजर्स फाटण सबब ऑक्सीजन में बाह पखड़ी ऑक्सीजन बंद थियण ए सड़न सब बारन जो मौत थियो है। इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसारण वारन इंतजाम के नाकाफी करार दे छो बाह के बचाव वारन इंतजाम ते लगे हा तो हमलो बे जख्मी थे हा बाह वक्त भी हमलो बारन के बाहर कढ़ने बदरा पान भजी वो लगे हा तो हमलो बे जख्मी थे हा बाह वक्त भी हमलो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक्य

आहे। मुराद अली शाह चयो त फिल्म सानियो अफ़सोसनाक ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शर्जील मेमन चयो त मुतासिरनि जी ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं। मोहसन नकवी चयो त साने ते दिली सदमो रसियो आहे। मुसलमाननि खे विरहाइण वारी साज़िश खे फील्ड मार्शल सां गॾिजी नाकाम बणायो। अमुन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कनि में नफ़रत पखेड़ण में नाकाम रहिया। सऊदी ऐं तुर्की सदाई सुठी ऐं ख़राब वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त जेको इज्तिमा यादि ॾिराए थो त असां हिकु उमत आहियूं। नसुल क़ौम जी उमेदु।

0: कमेर हिदत एहतराम सां मल्हायो वियो। ॾींहं जी शुरूआत वफ़ाकी राजधानी में 31 तौबनि सूबनि में 21 तौबनि जी सलामी सां तमाम मुल्की तरक़ी ऐं खु़शहाली लाइ दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वाहबत अक़ीदत जो इज़हार कयो वियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं, हर तरफ़ नातनि ऐं दुरूदनि जी बहार। कराची जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रैलियूं कढियूं वयूं। हैदराबाद डिवीज़न में ईद मिलादुनबीअ जूं रैलियूं ऐं मेड़ाका, दादू, जाम शुरू, मटियारो, सजावान ऐं टंडियालार में रैलियूं, मात मेहड़, चंबड़ रैलियूं कढियूं। लाड़काणे डिवीज़न में ईद सलाह वसलम लियूं, हर तरफ़ नातन ऐं दुरूद जो विर्द। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जेकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट ऐं कटकियूं, बाड़ो, कोडिची, गंबट, किंगरी ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं। मरहब। बदतरीन वाक़ियो आहे, इंसानियो अफ़सोसनाक ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शहदानो इंसानी मुराद अली शाह
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।